खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: बीमा को लाभ दी आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आज बनौ सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेन्स को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेन्स खुलेर जिऊ
1: रेडियो भेरी एफएम

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वैक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज़
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी